0: करके बता दिया हम लोग,
1: बता दिया हम लोग मैंने व्हाट्सएप करके बता दिया हम लोग।